नानक पातशाह जी दे दर दी सेवा करदे आं। भाई लैणा जी हर इम्तिहान विचों पास होए। एक वेरा दा जिक्र है, गुरु नानक सच्चे पातशाह लैणे नूं कहण लगे, बाहर जाके वेख कितनी कु रात होर है, ते अपनी सियाणप नहीं कीती, चतराई नहीं कीती। आके कहण लगे, गरीब निवाज, जितनी तुसी बिताई है बीत चुकी है, जितनी बाकी है वह भी तुहाडे हुक्म विच बीत रही है। उचारण करो श्री अकाल पुरख वाहिगुरु दा रूप समझ के भाई लहणे ने सेवा कीती। अज अखीरला परचा है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बड़ा वैराट रूप धारण कर लिया। आप अगे अगे हन ते पिछे संगतां जा रही हैं। अगे जाके की तकिया, तांबे दा ढेर पिया। आख्या भाई तांबा चुको, लै जाओ, वेचो, घर दा निर्वाह करो, जाओ साडे मगर तुहानू की मिलेगा। जिहड़े तांबे दे इच्छक सन उन्हां ने चुकिया ते वापस मुड़ गए। अगे जाके की तकिया, चांदी दा ढेर पिया, आ चुक लो भाई चांदी, साडे नाल आके तुहानू की मिलेगा। चांदी दे व्यापारी चांदी लैके चले गए। अगे जाओ देखिया तां सोने दा ढेर पिया, भाई जितने को रहिंदे हो आ चुक लो सोन। चांदी सोने दे व्यापारी सोना लै गए। होर बियाबान जंगल विच जाके की तकिया, हीरियां मोतियां दी ढेरी पई है, मुठियां भर लो भाई, साडे कोलों तुहानू की मिलेगा। हीरे मोतियां दे व्यापारी ओ लै गए। हुण धन गुरु नानक पातशाह जी ने जदों मगर देखिया ना, होर तां सारे चले गए हन, पर एक भाई लहणा जी खड़े हन। लहणिया इतनियां दातां लुटाईयां हन, इतने पदार्थ वंडे हन, कोई तू ही पदार्थ चुक के चला जांदा, तू साडे मगर आ गए। भाई लहणा जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साई, ओ गरीब निवाज सच्चे पातशाह, जेड़े कुछ लै के चले गए हन, संसार ते उन्हां दा कोई रिश्तेदार है, कोई घर बार है, कोई शाक संबंधी उन्हां दा है, कोई आसरा उन्हां दा है, पर मेरा तां तेरे बिना कोई होर आसरा ही नहीं। मैं किस तरह मुड़ जावां, मेरा तो सबो कुछ तू ही है। जदों ए गल आखी तां धन गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहणे नूं अपने गल नाल ला लिया। लहणे को अपने अंग लगा, लहणे को अंगद कर दिया, दूसरे गुरु नानक बना दिता। ए दातां मिलदियां हन गुरु नानक दे दर ते सेवा करके, पर सेवक होके आराम ना पाले। इस दर दा भिखारी बन गया तो अहंकार ना करे, मान ना करे, ते फिर केड़ी वस्तु है जेड़ी नहीं मिलेगी भाई तेनू। इसलिए गुर पीरां की चाकरी, गुरु दे दर दी सेवा तां औखी है। गुरसिख लंग गुरु पै जाई, समुद्र सागर होवे बो खारा, बड़ा औखा है गुरु दे मार्ग ते चलना। इसे लई हजूर कहंदे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर दरीजे सिर दीजे कान न कीजे। आख्या जे इस प्रेम दी गली विचों लंघना चाहना है तां फिर इस सिर दा सरफा कदे ना मंगी, जे सिर भी लग जाए तां वी ये सस्ता सौदा समझी। सात संगत बोलो श्री सिर दीजे कान न कीजे। ते फिर जिन्हां ने आपा गुरु दे अर्पण कर दिता, प्यारी सात संगत, फिर ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। ओ दाता नहीं, दाता वंडन वाले बन गए, दातार बन गए, जिन्हां ने गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती है।
ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਣੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣ ਗਏ।

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला कठूरी को गाहक आयो लाद्यों का निर्भिर्ख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी सो उर्ज पहाड़ मोहन ठगौरी सो

शरीर नू इस जवानी नू बुढ़ेपे ने काबू कर ले, बुढ़ेपे ने जीत ले, हाले भी तू सिमरन नहीं करदा, तेरी उम्र बीतती जा रही है।

सारे सुख देने वाला एक कोई और आम है, कोई और नहीं। ओदा सिमरन कर तेरी गत हो जाएगी।

निंदिया की थी तामी कोई परवाह नहीं, जिदे वास्ते सोना ते लोहा एक समान है भाई, ओ इंसान मुक्ति नु प्राप्त समझे।

एक आदमी आया, उत्ते शाल दे गया। ठंड का वेला सी, कीमती शाल मिलया पर कोई खुशी नहीं। एक आदमी आया,

अपनी जीव दे नाल उस गोबिंद दे गुण गाओ, कन्ना दे नाल उदा जस सुनो, ते फेर भाई तुसी जमा दे वस नहीं पवोगे।

हर रोज दिन रात माया वास्ते इंसान भटकता फिरता है, पर करोड़ों दे विच कोई विरला इंसान है जिहड़ा परमेश्वर दा

पानी दा पतीला रख दी, पानी गर्म हो जाए ते आग दे तेज बलन दे नाल पानी उबल दे ते बुलबुले उठ दे ने पानी दे। गुरु साहब जी कहंदे ने भाई जिस तरह ओ बुलबुले उठ दे ने पानी दे ते खत्म हो जांदे ने, इस तरह ही इस संसार की रचना भी इस तरह की।

दुखी हो गया ते सारियां ने साथ छड़ दिता, पर याद रख सारे साथ साथ छड़ जांदे नहीं, पर एक परमेश्वर जिहड़ा है वो हमेशा सहाई रहिंदा है।

बचपन जवानी बुढ़ेपा तेन अवस्था समझे के भजन तू बगैर तीनों अवस्था एवं ग्वाली भजन तू बगैर बिरथिया ने।

झूठे मान क्यों कर दे, जगत नु सुपने दी तरह समझ, कुछ भी तेरा नहीं। गुरु नानक ए गल सची कहंदे, करदा मालिक सारी उम्र तियां पुत्रां दी पालना करदा है, पाप करके कमाई करदा है, दिन रात भज्जो फिरदा है माया वास्ते, जदू मरदा वेड़े विच पिया हुंदा है, फट्टे ते पांदे ने जिन्ना तियां पुत्रां दी पालना की थी, फिर ओही कहंदे ने एदियां जेबां खोल लो, घर दियां चाबियां तां नहीं जेब विच, किधरे माया वाला बटुआ तां नहीं पाया, जे पाया है तां कढ लिया, हाथ देख लो कोई सोने दी अंगूठी तां नहीं पाई, कड़ी तां नहीं पाई, जे पाई तो ओ भी ला ली, जिस चंगा सूट पाया तो वह भी ला लेंदे ने, घर दा मालिक एक कफन पा के उही तियां पुत्र लैके तुर पैंदे ने, शमशान घाट लै गए, जे कफन चंगा है ते कई बारी साड़न वाला वह भी ला लेंदा है, माड़ा जा कफन रह गया ते फिर अग कहंदी भाई आया ते नंगा सी, ये कफन कित्थे लै चले हैं।

सारा जगत झूठा है, रचना सब विनसन वाली है। जिस तरह रेत की कंध खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह इस संसार

बंधन पै गए, कुछ भी उपाय नहीं हो रहा। ऐ परमेश्वर हुण तेरा ही आसरा है, मेरी रखिया कर, जिवें तंदुए तू गज हाथी दी तू रखिया।

धन पदार्थ ने किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। एक परमेश्वर का सिमरन है जिन्हें तेरी सहायता करनी ता पाई उस गोबिंद दे गुण गा ताकि तेरा जिड़ा जन्म है।

भाई शाह भाई गुरदास जी, अकाल पुरख वाहेगुरु अगे अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, हाँ अपराधी गुनाहगार। कोई भाई गुरदास जी अपराधी नहीं सन, पापी नहीं सन, क्योंकि जिसने सच दे मार्ग ते चलना है उसनू निम्रता धारण करनी पड़ेगी। जे किसे जपा तपा दा मन विच हंकार आ जावे तां ओ जप तप कीते होए निष्फल हो जांदे हन। इसलिए जिसने इस मार्ग ते कदम रखे है उसने सब तो पहला निम्रता धारण कीती है। भाई साहब श्वास श्वास बंदगी करदे सन, श्वास श्वास जपदे सन, ते फिर सारा जीवन उन्होंने गुरु चरणा विच रह के अनेकां जीवां नूं गुरु नानक दे दर नाल जोड़िया है। एडी मान महान हस्ती होंदिया होया भी भाई साहब कहिंदे नें हों अपराधी। आ जो तुसी शब्द सरवण कर रहे हो, गल्ली असी चंगी हां, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा ए शब्द है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी अकाल पुरख वाहेगुरु अगे ए अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, गल्ली असी चंगी हां, असी गल्लां करके तो बड़े चंगे बनन दा जतन करदे हां, पर ऐसे हां नहीं। हे वाहेगुरु, असी अपने आप नूं बहुत कुछ समझते हां, पर ओ गल साडे विच है नहीं। गल्ली असी चंगियां, गल्लां असी बड़ियां ज्ञान दियां करदे हां, पर आचारी बुरियां। असल विच असी माड़े पासे जा रहे हां। मनो कसुद्धां कालियां, मन माड़े पासे दौड़दा है, ते गल्लां असी चिते हुण दियां करदे हां। हे वाहेगुरु, तेरी बख्शिशी सानू तार सकदी है, तेरी रहमती तार सकदी है। और भाई साहब गुरदास जी कहंदे हन, मैं तां रोम रोम गुनाहगार हां। हे वाहेगुरु, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा। चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ की महान हस्ती हुए हैं। आप जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह ने कलयुगी जीवां नूं तारन हित गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की, उस दे लिखारी हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। सिख पंथ के वेद व्यास होंदे हुए भी आप कहिंदे हन हों अपराधी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। एक वेरा दा जिक्र है, भाई साहब गुरदास जी जा रहे हन, ते पिछे बहुत संगत जा रही। किसे ने वेख्या भाई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर इतनिया संगतां जा रही हन, तां पुछन लगा भाई ये कौन साहब हन। भाई साहब गुरदास जी ने एक गल सुन ली, ते आप उस प्रेमी दे पास आ गए जिसने पुछया सी भाई ये कौन साहब हन। भाई साहब कहन लगे, भाई जे कुछ मेरे बारे पूछ रहा है तो इना नू ना पूछ, मैनू पूछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या है, ते मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां जो कुछ मैं हां। असी भी अपना परिचय कराउंदे हां ना, कोई पूछे भाई तुहाडी क्या तारीफ है, ते किड्डे चंगे चंगे शब्द लभ के अपने लई वरतदे हां। और भाई साहब नूं जदों पुछया गया तो भाई साहब कहंदे हन, भाई इना कोलो ना पुछ, जे मेरे बारे कुछ पुछना है तो मैनू पुछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या, मैं अपने अंदरले नूं भी जानदा हां। आख्या जी तुसी दस दियो। तो भाई साहब कहन लगे, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा। चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा,
ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਗਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਖੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ।

कि आ जन्म तो बाद मेरा अगला जन्म सिखां दे घर होवे ते मैं सिख बन के गुरु कलगीधर पातशाह दा अमृत छके पंजा कक्कियां दा धारनी बन के ते सिख हो जावां, फिर मेरा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। मेरा दिल करता है कि एक बार अमृत छक लव। एक मुसलमान वीर की भावना है सिख बनन की, अमृत छकन की। ते अज दा सिख कदे झात मारी, अज दा सिख नाइयां दी दुकाना ते बैठा है, वह चाहता है कि मैं केस कतल करा लव, केसा की विद भी करता है। अज तकिए मेरिया भैणा भी केसा की विद भी कर दिया। मैं उन्हां भैणां नूं भी बेनती करा, उन्हां वीरां नूं भी बेनती करा, आओ भाई जे तुहानूं सिखां दे घर जन्म मिलिया है ते इस विरसे नूं संभाल लईए, आओ भाई पूर्ण हो जाइए। जदों पूर्ण हो जावांगे, दस्तार सजावांगे, गुरु की सिखी जो गुरु ने बख्शी है इस नूं गहना मन के हंडावांगे, ते फिर गुरु बख्शिश करेगा, झोलियां भर देवेगा। आओ फिर अपने मन नूं समझा लईए, ए मंजिल दूर बथेरी जो मिलदी ना हर वेरी। हर वारी तां ए मनुष्या जन्म नहीं प्राप्त होना, तैनूं ए दात प्राप्त होई ए ते हुण रहितां विच रह, बख्शिश हासिल कर, इस सिखी नूं गहना मन के हंडा। अज वे बीबियां गहना पाउंदियां किस वास्ते, अपने शरीर नूं शिंगार दियां, अपने पति नूं खुश करन वास्ते। ते आ भाई सिखा, तेरा भी पति ओ परमात्मा, तू भी उन्हूं खुश कर, अपने शरीर ते आ गहना पंजा कक्कियां दा धारनी बन, अपने गुरु नूं मना लै, अपने गुरु नूं खुश कर लै, कि बार बार दात प्राप्त नहीं होनी। ते आ फिर एक बार मन

अगला सवाल कि ये भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन कित्थे है, ये भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

कोई रसना खाली ना रहे। पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरी भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत घोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

जो हरी जश विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहेगुरु दी याद विच गुजरदा है ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा। बाकी दा समा लेखे विच नहीं, क्योंकि गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन मनुख सारी उम्र धन जोड़ जोड़ के मर जांदा है, उसका सुख नहीं मान सकता, इसे तरह ही अमोलक श्वासा रूपी धन जो मनुख नू मिले, जे भाई जपया नहीं, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं कीती, हजूर कहिंदियां ने गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, तेरा संसार ते आया निष्फल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समय सिमरन विच जप तप विच बतीत होंदा है, समा ओ सफल है।

रूप होने दे नाते इको ही हन, पर फर्क इतना है कि समुंदर बहुत विशाल है ते बूंद एक थोड़ी छोटी जही चीज है। बूंद जिवें थोड़े पानी विच थोड़ा होन करके बहुत सारे नुकसान हो जांदे हैं। जिस तरह एक दरिया पानी दा भरिया वगदा है, उदे किनारियां तो पानी उछल के नीचे इधर उधर टोयां विच गड़ियां दे विच जा डिग गया, थोड़ा पानी होन करके बड़ी देर तक खड़न करके उथे डंगर पशु फिरदे हन, ओ पानी बदबू मारन लग जांदा है, जी पैदा हो जांदे हन, होर कई किस्म दे नुक्स पैदा हो जांदे हन उस जल विच, जिस नूं कोई पीण तां की उस दे नाल हाथ भी धोना पसंद नहीं करदा। सो क्यों ओ दरिया तो अलविदा होके अगर उस पानी नूं कोई महापुरख कोई भला पुरुष उठा के उसी दरिया विच फेंक देवे सुट देवे तां फिर ओ शुद्ध दा शुद्ध है। इसे तरह ही ए जीव आत्मा अज्ञान वश होके परमेश्वर तो विछड़ जांदी है। हालांकि जिहो जिहा परमेश्वर दा सुभा है सत चित आनंद एहो जिहा ही एदा है, पर उस तो अज्ञान वश होके विछड़ के इनू अनेक दुख तकलीफां आ चिमड़ दियां हन, आद व्याद उपाद आ चिमड़ दे हन, आशा तृष्णा चिंता तिन देना आ चिमड़ दियां हन, काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंज दूत आ चिमड़ दे हन। ए कदों चिमड़ दे हन जदों परमेश्वर दे होंद तो मनुख दूर हो जांदा है, ते जे कोई महापुरख कृपा करे उस पानी नूं फिर दरिया दे विच चुक के सुट देवे परोपकार करे तां फिर ओ पानी फिर निर्मल हो जांदा है। इसलिए हजूर कहिंदे हन भाई जपन वालियां दी संगत विच तैनू ही नाम मिठा लगन लगेगा, क्योंकि गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया, होर किसे जूनी विच तू जप नहीं सकदा एहो ही तेरी बारी है। जपन वालियां दी संगत कर, भले पुरुषां दी संगत कर।

उस मालक दा नौकर मुस्कुरा पिया। मुस्कुरा के अपने नौकर नूं हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं अपनी लोई दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा लोई दी संदूखड़ी

साहब जी कहन लगे मरदाने जदों कोई आदमी गोलक विच रुपया पांदा है ते खड़ाक ज्यादा हुंदा ते जोगी राज अंदाजा लगा लैंदा कि हुण किसी ने रुपया पाया रुपये तो घट पैसे पाए घट खड़ाक होया ते अंदाजा लगा लिया कि इन्ने क पैसे पाए ने। मरदानिया इस जोगी राज ने अखां तां बंद कीतियां ने पर ए परमेश्वर नाल नहीं संदूखड़ी दे नाल जुड़िया होया ए तां अखां बंद करके पैसे दा हिसाब पिया लगांदा है कि संदूखड़ी विच किन्ने क पैसे जमा हो गए। मरदाना कहन लगा महाराज ये किस तरह हो सकता है। साहब जी कहन लगे जे देखना है ते जेड़ी संदूखड़ी एदे सामने पई है चुक के एदे पिछे रख दे। मरदाना उठिया उस जोगी राज दे सामने संदूखड़ी चुकी ओदे पिछे रख दिती अपनी जगह ते आके फिर बैठ गए। थोड़ी देर दे बाद उस जोगी राज ने अखां खोलियां बैठियां लोकां वाल देखिया ता ए गल कही ऐ संत जनो आज हम आप लोगों को तीनों लोकों की बातें सुनाएंगे। आज हम ब्रह्मपुरी में गए वहां वेदों की कथा हो रही थी फिर हम विष्णुपुरी में गए

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण।

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा तो देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है कि मैं

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी।

भगत कबीर साहबदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटिया दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां ने, गला विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े, ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गल्ली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देण लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे हां। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वह संत नहीं, पता है वह कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान करदे।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

काठी कहिंदी ने लकड़ा नूं, जिहड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने, सुचता इन्नी रखदे ने

बसुधा खोद करे दोई चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बालदे ने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

अभिमान दे भरे होए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपन जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

के रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ये कीड़े ते मकौड़े। ऐसे ही ठग दियो बखाने, इसी तरह इना संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असी घर बार छड्डे आ, असी त्यागी, पर इना संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपे है, उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा

आपू परमात्मा अकाल पुरख निमाणिया नु मान दिंदा है। धन गुरु नानक पातशाह तो लैके दसां पातशाह दी प्रतख जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब तक ऐ तुसी वेखो निमाणिया नु माण है। अरमता साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने कीती, पैसा पाई मरदाने जय नु जो एक पिछड़ी जाति विचों सी, ओनू अपने गल नाल ला के इतना वड्डा मान दिता। कहन लगे भाई अड तो तू मेरा भाई है, अपना भरा बना लिया, अपना भरा बना के इतना मान दे दिता कि भाई साहब की बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद है। जिथे आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करने आ उथे भाई साहिब भाई मरदाना जी नूं भी नमस्कार हुंदी है। प्रोफेसर प्यारा सिंह जी पदम ऐसा जिक्र करदे ने। सो मैं जिक्र कर रहा निमाणिया दा माण। फिर धन गुरु नानक पातशाह ने भाई साहब भाई लालो जी का कुंडा आप खटखटाया, लालो सत करतार, भाई लालो तन रंकार, कहने ने आवाज आई बाबा भंडारा अगे है, यह तो एक गरीब का घर है। सतगुरु कहन लगे ना भाई मैं भंडारा खान नहीं आया, मैं ते तेरे कोल आया। बुआ खोलो, जो बुआ खोलिया ते वेखदा है धन गुरु नानक पातशाह सामने खड़े ने। जी आया आख्या, प्यार नाल अंदर बिठाया। धन गुरु नानक पातशाह ने इस निमाणे नु भी मान बख्शे, क्योंकि वह है ही निमाणिया का माण है। संपूर्णता धन गुरु अर्जन साहब दे रहे ने। ध्यान देना, भाई मरदाना ते भाई लालो जी नु गल नाल ला के गुरु साहब ने निमाणिया नु मान दिता। धन गुरु अर्जन साहब हुण की कर रहे ने उन्हां पिछड़ियां जातियां नु जिन्हां नु समाज ने दुरकारिया होया सी, साध संगत उन्हां नु गल नाल ला लिया, अपनी गल नाल ला के इतना सन्मान दे दिता, अपने नाल बिठा के अपने वर्गा दर्जा दे दिता। अज तुहाडे समक्ष दास केवल इतनी ही बात रखणगे कि तुसी वेखो निमाणिया नूं मान किवें मिलदा है, जिहड़ा इस दर ते निमाणा बन के आउंदा है उहनूं गुरु घर वल्लों मान किवें मिलदा है, इज्जत रिस्पैक्ट किवें मिलदी है। हुण सतगुरु जी बाणी विच कहिंदे ने

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने